0: रेट को नंबर तेरा तीसरा था नंबर चोग लेकिन था तुम दग जाब जोंग गे रोयं जिन्हें चुप्पियां ना तेरं गे जाब जोंग गे ता दोनों न्यामों दे जिना निलम जिना विचु लमा नेट बुडोमा अंचु चेतन लमा पंचु चेरं बम गोंबु चब तगे जिना लमा खांचु सुख
1: Oh, demo.
0: Ya demo.

0: tarjuma mrani chak
1: chak
0: tarjuma tarjuma mrani kose
1: yaki tarjuma mrani chak tarjuma mrani gma
0: oy
1: ole nya sama mrani chak tarjuma mrani gma znrela
0: अरे
1: या मर्तक सोले खान जान जा ती नमा मशीक ती नमा
0: मशीक
1: मशीक ती जिन तशा के तोंग मारा मर्तक सोले खान जान जा
0: को मियो दै ता ता मशीक
1: या तुज गा छिर गो
0: या
1: आ तो अख संबा मु चंग गोन जित गा खसम जे छि ती गो
0: या या
1: मी न तग गोन जित मान जंग मी Changka taga ngonjit.
0: Changka ngonjit
1: ari? Ari, changka ngonjit. Mee zina. Manda nga mee nye re la.
0: Ari?
1: Nye nda changka taga ngonjit. Pungu zina changka taga ngonjit. Yerkir nda changka taga ngonjit.
0: Yerkir dawa?
1: No, dawa zina ma re. Changka, changka.
0: O.
1: Anga. Changka taga ngonjit. Yerkir tayo ga? Yerkir tase ga? अखी का
0: मची करो मी
1: मी
0: नरम मची कर आर जिस कर
1: ओले पुंग मची का
0: मची करो
1: टंका टंका गंजु ना अखी गया अदावा आज ना टंका खची गंजु रे मो
0: ओले
1: ओले ता मीज ना टंका तर पुंग ज ना तर जिस कर ज ना तर जिसकर तसे ग
0: दनरे
1: जिसकर दन मार
0: जिसकर
1: जिसकर नेरदन देमो
0: ओरे
1: ओले नेरदेन त नेख चाबदिन ग गोंजु टे खरगे जिसकर जन नेख चाबदिन ग गोंजु ट ता फों जन तरे या मेज न तर अखी ग
0: फों न दनरे मार बा
1: आ फों जन दे मार
0: फों मची गरो त दा क्षम मची गरो
1: Ya, mii zina xisam rigo, xisam gungon juta, pungu ina rnga gungon juta, pungu rnga tasika, rnga gungon juta. Ya, ti toni towa zhuwa mo nyungo, towa zhuwa mo rafshung shiga loo te yoke, tirif shiga loo te yoke.
0: Tirif shiga loo bja.
1: Tirif shiga loo bja, rafshung shiga. Rafshung shiga loo tok.
0: Rafshung shiga loo...
1: Rafshon chiga lo tok.
0: Rafshon gomandar da tirup gomandar.
1: Tirup gomandar. Tirup gomandar ya. Rafshon jawi mek. Tojir.
0: Tirup chiga ta lo. Zanubi. Soyari lo.
1: Amish da lo.
0: मछी
1: गतना रफ सोचता लो जाएं कभी
0: मार तीर सिग्लो जा देरो
1: तीर सिग्लो जा रे हां ले रफ सोच मछी का
0: मछी
1: या
0: दोनों
1: के जिमिक्स रफ सोच लो टिक चरिया
0: ओ या
1: रफ सोच लो टिक चरिया तीर सिग्लो जा रे गो
0: या
1: हां या तनी टवार गांव मनिंग गो
0: या
1: Tawar ngawa muduko stawi kato gusha gangangara.
0: Garu, amaru, seru, jangka.
1: Seru, ngwenbu.
0: Ngwenbu, oye, ngwenbu, jangka.
1: Garu, amaru, seru, ngwenbu tachurgo.
0: Ya, ya, ya.
1: Ngwali, stawi kato gusha. Ya, tadachi, ngoni fkertangu ga...
0: Martag jimmin chanda.
1: Chazu, martag sole khanjanda. Taga tsikang jima? मर्तक सुगले खान रहा
0: मर्तक सुगली खान रहा मर्तक सुगली खान रहा
1: तगे चल रहे या तगे तकान जेमा की गुण रही चित चल जोनो न्यासमा मरी नित स्टार जवा मरी नित गमाते निकु शैतान नर मो जितने ता मर्तक सुगले खान रहा तगे तांखी तकान जेमा तक ही गुण रही
0: हाँ
1: हाँ मिकी तुम्हारा मिकी का